0: करवाना चाहते हैं, पर आया नू कितना टाइम हो गया? आया नू जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, साल हो गया, 6 महीने हो गए. सो आया नू जो तो इतना टाइम हो गया होया, इंश्योरेंस अपने कोल नहीं हैगी. इंश्योरेंस लेके तुसी क्लेम कर दोगे तो तुहानू की लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि तुहानू वो कंपनीज इन्ने टाइम दियां बिजनेस दे विच हैगियां ने, उन्होंने भी पता है कि पॉलिसी लेके एकदम क्लेम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है. हाँ, 100 पिछे एक जेनुइन क्लेम हुंदा हैगा कि ऑफ कोर्स की पॉलिसी लई प्रॉब्लम आ गई, दैट्स फाइन. बट मोस्टली जो ऐदां दी कॉल आंदी, सानू भी पता हुंदा है कि जे 6 महीने पहला इंश्योरेंस नहीं लई ते हुण बंदा 1 महीने दी इंश्योरेंस क्यों मांग रहा है, बिकॉज कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम आई हुई है. सो उत्थे असीं कह दईदा कि क्लेम मिलना नहीं हैगा. बट कई वार असीं सुनदे जी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दिंदियां, उन्होंने इंश्योरेंस करवाई सी क्लेम नहीं मिलिया. बट उहदे पिछे एक रीजन हुंदा हैगा. हुण जिन्ना मेरे पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस दे विच जेड़ा मैं सब तो वड्डा रीजन देखिया हैगा क्लेम डिक्लाइन होने का, वह हैगा मिसरिप्रजेंटेशन. मिसरिप्रजेंटेशन जदों असी कोई चीज हाइड कर ली, जदों असी कोई चीज गलत दस दी, असी कोई चीज दसी नहीं, सानू लगा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी. और हुण इस टाइम ते, क्योंकि हुण समर का टाइम है, विजिटर सुपरवीजा नंबर बहुत वड्डा हैगा और क्लेम उन्ना ही ज्यादा आ रहा हैगा. अज मैं सवेरे ही कॉल आई है, वह कहते जी इंश्योरेंस तो हैगी है, जिन्होंने प्रॉब्लम आई है हॉस्पिटलाइज ने, बट यह है कि उन्होंने डायबिटीज से हार्ट कंडीशन दस दिता, बट यह नहीं दसिया कि परसन जड़े ने वो अखा तो देख नहीं सकते, अपना इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज के काम नहीं कर सकते, और डायबिटीज करके उन्होंने जड़े है वह फिंगर कट हुए हुए ने. हूँ यह चीजा हाइड कर लिया, हूँ परसन हॉस्पिटलाइज हो गया, तुम हॉस्पिटल से चीज कि हाइड कर लोगे? उत्थे अपन डॉक्टर डिटेल देनी पैनी है. हुण इस केस दे विच जिहड़ी उन्हां कोल इंश्योरेंस हैगी है, उन्हां दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे विच ही उह नहीं आ रहे, मतलब जिहड़ी इंश्योरेंस उन्हां ने लई हुई है उहदे विच उह एलिजिबल ही नहीं हैगे. और मोस्ट प्रॉबली कंपनी ने क्लेम डिक्लाइन करना हैगा, ओवर 90% चांसिस ने क्लेम डिक्लाइन होने दे, बिकॉज मिसरिप्रजेंटेशन है. और जिहड़े हॉस्पिटल दे डॉक्टर ने उन्हां दा फुल रैकेट जाना है कंपनी कोल, जदों रैकेट जाना है चीजां उहदे विच जानियां जानियां ने. उत्थे जे असीं इह कहीए कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम डिक्लाइन करता उहदी गलती है, या इंश्योरेंस एडवाइजर ने गलती कर दी, तुसी जो तो दसिया ही नहीं हैगा, तुसी वो चीज़ नू डिस्कलोज ही नहीं किया, तुसी हुण डिस्कस कर रहे हैगे कि हाँ जी उन्होंने ये भी चीज सीगी, ये भी चीज सीगी, क्योंकि अपफ्रंट एडवाइजर ने तो ना इंश्योरेंस कंपनी ने किसी ने भी जाके नहीं देखना कि हाँ की प्रॉब्लम है. जो तो तुसी सारा कुछ डिस्कलोज कर दे हो, दैन उत्थे एडवाइजर दी ते इंश्योरेंस कंपनी दी रिस्पोंसिबिलिटी हुंदी है कि तुहाडा जिहड़ा क्लेम है वह टाइम सिर सही तरीके दे नाल पे होए. अगर तुसी कोई भी मिसटेक कर दिती, कोई भी हाइड कर दिती चीज, वो रैकेट दे विच निकल आई, एज लोंग एज कंपनी को रैकेट नहीं जा रहा, कंपनी नूं वो चीज का पता नहीं लग रहा, तो वह डिफरेंट सिनेरियो है. अदरवाइज जदों रैकेट जा रहा है, कंपनी नूं पता लग रहा है, तो क्लेम डिक्लाइन होने ने. सो इस करके मैं रिक्वेस्ट ही करूंगी जिन्हें भी साडे लिसनर ने, चाहे वह विजिटर सुपरवीजा पॉलिसीज ने, चाहे वह पर्सनल इंश्योरेंस ने, हाइड ना करिया करो. कोई फर्क नहीं पैना $50 वध देण नाल, घट देण दे नाल कोई फर्क नहीं पै जाना हैगा. बट जदों परसन हॉस्पिटलाइज हो जाता हैगा, एक दिन का हजारां दे विच बिल बनता हैगा. और अगर वह परसन वीक या 2-4-5 वीक हॉस्पिटल रह गया, लखां डॉलरां च बिल बन जाना हैगा. यह ना हो कि असी 50-60-100 डॉलर बचाते बचाते बाद विच जिहड़ियां इंस्टॉलमेंट दे अंदर खिरजिए. सो यह चीज़ का जरूर ध्यान रखना है. और दूसरी चीज, जिन्हें टाइम लिए भी तुहाडे कोल पेरेंट्स विजिटर आ रहे हैं, पूरे टाइम की इंश्योरेंस कट्ठी करवाओ. ये ना करो कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद हर बार तुम नवी पॉलिसी लो, वो भी प्रॉब्लम आती हैगी है, क्योंकि जी नवी पॉलिसी है पुरानी पॉलिसी का क्लेम कवर नहीं करती हैगी. सो छोटिया छोटिया मिसटेक आप जरूर करते हैं, हमेशा एक्सपीरियंस एडवाइजर को जी पॉलिसी लिया करो, डिटेल च डिस्कशन करके और पूरी समझ के पॉलिसी लिया करो. ये ना सोचा करो मैं उतों 100 की मिलती है, इतों 80 की मिलती है, इतों 70 की मिलती है. कंपेरिजन जरूर कराया करो कि डिफरेंस की हैगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी सेम ने, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी सेम ने. चाहे तुसी मेरे तो लै रहे हो, किसी होर तो लै रहे हो, किसी थर्ड परसन तो लै रहे हो, रेट दे विच कोई फर्क नहीं पैना. बेनिफिट की ने, तुसी सारियां कंडीशन जिहड़ियां कंपनी दी मैट कर रहे हो, वह चीजा जिहड़ियां ज्यादा जरूरी हैगियां ने. सो कोई भी साडे लिस्टनर, अगर तुहाडा कोई क्वेश्चन हुंदा विजिटर सुपरवीजा या पर्सनल इंश्योरेंस नूं लैके, डेफिनेटली तुसी मेरे नाल कंसल्ट कर सकते हो. नंबर है 416-994-7272-416-994-7272-72-72. या कोई थोड़े होर क्वेश्चन है अपनी पर्सनल लाइफ क्रिटिकल डिसेबिलिटी, या कोई पुरानी पॉलिसीज रिव्यू करना है, इन्वेस्टमेंट्स ने, RESP, RRSP, TFSA, फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, तुसी वधिया रिटर्न लेना चाहते हो अपने पैसों के उपर, या थोड़ी कोई कंपनी है, तुसी अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, स्टेट प्लानिंग करना चाहते हो, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਫਿਸ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਲ ਕੈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਗੇਨ ਸੇਮ ਜੀ 416-994-7272, 916-994-7272।
1: ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 416-994-7272, 416-994-7272, 4942-7272 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਾ ਬਿਨਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।

0: सच कह जो हंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरो दी पानी सच है।

0: पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकाब हूँ चूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम खूबसूरत स्रोतों के लिए। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:04 हो चुके हैं, थोड़ा साढ़ा साथ होने तो लेके 8 बजे तक बने रहना। तो मेरे नाल पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश शहरपुर जी जुड़ चुके हैं।

0: Gardner Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: Rupinder Garewal Law Office. Real estate transaction, will only, family law, ja fir power of attorney. All services under one roof. Community da janya pehchaniya naam, Rupinder Garewal. Barrister, solicitor and notary public. Located at Chinkuzi and Bavet. For all services call 905-497-1211. 905-497-1211.
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है. ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है. पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने. इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200. 416-518-3200.

0: F-150 या मस्टैंग या लिंकन या फोर्ड की कोई भी गड्डी खरीदने लिए अनिल चोपड़ा, रोहन चोपड़ा, चोपड़ा ब्रदर्स, चोपड़ा फैमिली तुहाडे लिए हाजिर है। 42 साल तो टॉप सेल इन ओंटारियो कार डीलरशिप दे विच टॉप दा नाम मिल्टन फोर्ड तो चोपड़ा। कितों भी गड्डी खरीदने तो पहला मिल्टन फोर्ड ते कॉल कर सकते हो 416-302-9941
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
0: ਤਵਾ ਕਿਚਨ, 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699
4: याद है मैनू जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, कितनी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
5: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया। किन्निया तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Kataria Tours and Travel.
2: 32, 55, 80.
3: ते 98.
2: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: हो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने, जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828.
0: This is AM 530.

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टांडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। अच्छा मतलब उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। सुखी निजर मनप्रीत जी तुहाडे लई, सॉरी किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करेंगे और मनप्रीत जी हिंदुस्तान तों खबरां तुहाडे लई लेके आउणगे। सूरज सिंह 6:03 ते आया ते 8:44 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 9:05 ते शाम नूं आएगा ते 5:52 ते सवेरे जाना। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नूं 29 डिग्री तापमान, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। संडे नूं बारिश पैण दे पूरे सार नजर आउंदे ने, बदलवाई रहेगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं 27 डिग्री टैंपरेचर होणगे। पेट्रोल दी प्राइस अज 1 सेंट उपर जा रही है अद्धी रातों ते मंडियां दे भाव जिहड़े ने इह तुहाडे लई जनक जूलर दे सहयोग नाल पेश कीते जांदे ने जी। मंडियां दे भाव च अज इह टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैक ते सोना थल्ले है। डालर ते क्रूड ऑयल जिहड़ा इस समय उपर चल रहा है। नवदीप बेंस लीड कर रहा है फंडिंग दी, जो पैसे कट्ठे करना हुंदा जिहड़ा फंड रेजिंग, काफी ज्यादा कट्ठे कीते हुए उन्हें ते जिहड़ी इलेक्शन है वह लड़न तैयार है कि उन्हें लिबरल वनियो अपना लीडर बनना है ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप दे लई। एक गल है, इन्हें आपकी MP की कुर्सी क्यों छड़ी सी, वह बहुत जरूरी है पता करना। क्यों इतने तक कुर्सी बन के बह जाते, कोई छड़ता ही नहीं है, घड़ीस घड़ीस के लाने पैंदे आ। आपकी कुर्सी क्यों छड़ी सी, व्हाट्स द रियल रीजन। ये उवें ही है जिमें हुण तक नीना टांगड़ी और हरदीप गरेवाल ने ना तो माफी मंगी है ना कोई टिप्पणी की है। अजे तो उस टाइम चो वधिया सी, वह कहिंदा देखो जी आप तो हो गई गलती, जिन्ने पैसे मैं खाधे टैक्स पे आ चुको। हुण इन्हां ने इत्थे कोई जवाब नहीं दिता, ना इन्हां ने किसे देसी अखबार ने खबर सांझी की है। व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, यारी दोस्ती आपकी जगह खबर तो सांझी कर लो। एनीवे जाने आने स्टे ट्यून, बड़ी जल्दी हरप्रीत जी नाल भी गलबात करांगे। पहला चलते हैं टिक्का जंक्शन। टिक्का जंक्शन लई 6474294040 केटरिंग करानी है छोटी वड्डे फंक्शन लई, नो प्रॉब्लम 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज विच छोटी वड्डी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम 6474294040 647-429-4040। मॉर्गेज सोल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसी अपनी मॉर्गेज BC लैंडर तो हटा के A लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है। कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो। 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम।